0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: 10 89 677 बिहानी सिलाई मेसिन पसल चरीकोट बीच बजार।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: आजुरा को बैठी सावनी अरे चुमा पानी ओरी ओ राजा रानी धानी आई उन संसार की नहीं रहीले यो जीवन ऐसा ही सुख का था ना यो घर को पी रहीले ओरी ओ उकाली जन को चावले दे दूँगा गलां दा गल दाई ना गरा को मंचे ना बिजे सामन दाना ही फल दाई ना
1: यो कालो बन्नी वेला गाऊनी
2: ये सुरु गर्नी वेला ची की गाऊनी
1: चाहे सुरु में से बयाना को झूल के गाऊँ सीता को तोपनी बात इमरे बैठी खावनी आई रे चुम्मा पनी
0: हरी आवानों का चौई पाता पाके को खुर्शानी बागमती दाई अथमाई समझाऊंगी बिरसानी ओरी ओ शिरा मायरा सुना को शैली छाती मायरा उठाक ग्यांपा मायर तो हवल दरवाजे समल को साइनों पां ओरी ओ
1: पहला तो सोपटा गाँव से आज अपने गाँव थी अब किन्हाने उल मुल्मा अलविदा.
2: Thank you.

राजा नौश काय सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नई परे का घरे मंडा खुन सवाले दुर्योधन समान कर्णई समान दानमा तागत श्री बलराम कई सरी हवस सदवा तई काम राजा धर्म कुमार कई सरी हवस श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कई सरी ज्ञान हवस सुजन मनुन बड़ाले पने कृति उज्ज्वल सुत सहित का